हैप्पी हैप्पी संडे क्राइस्टचर्च, कैसे हैं आप सभी। रेडियो गजे का साथ है, मैं आपका साथी आरजे कृष, और आरजे जी भी बहुत ही जल्द हमारे साथ शामिल हो जाएंगी। तब तक के लिए आप सभी का हम एक बार फिर रेडियो गजे पे स्वागत करना चाहते हैं। बहुत ही जल्द हम अपने जो फेसबुक लाइव है यहाँ पर भी जाने वाले हैं, और जी हाँ, आज खासतौर पर से आप सभी को हम पर्सनली दिल से शुक्रिया कहना चाहेंगे। तो ये बहुत ही जल्द हम जब लाइव पे आएंगे और हमारी फ्रिक्वेंसी पे भी, आप सभी को किस चीज़ के लिए शुक्रिया या किस चीज़ के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं ये बहुत ही जल्द आपको पता चल जाएगा। तब तक के लिए इस गीत को एंजॉय कीजिए। जितने लोग हमारे साथ 96.9 पे शामिल हुए हैं, नीरज, यू एंड योर एंटायर टीम, आप सभी के लिए ये गीत। यू लिस्निंग टू रेडियो के जे लोकल, ओनली ऑन प्लेन्स मीडिया।

0: हैप्पी हैप्पी संडे अगेन जीबी जी. क्या यही प्यार है और क्या यही खुशी है जो कल हमें एक साल के मेहनत के बाद, एक साल के कड़ी मेहनत के बाद क्राइस्टचर्च ने, और सिर्फ क्राइस्टचर्च ने, पूरी ऐसा लगता है पूरी दुनिया से हमें जो प्यार मिला है. हाउ आर यू फीलिंग टुडे? मुझे पता है फाइनली आपका रोना बंद हो गया है, सो टेल अस हाउ आर यू फीलिंग.
1: कल रात हम काफी इमोशनल थे, बट अभी आई स्टिल एम फीलिंग वेरी ओवरवेलम्ड विद जैसे फोन कॉल्स एंड मैसेजेस एंड stories and post and all, really overwhelmed. Feel very supported and loved by all of you. Jitne bhi logon ne hame support kiya, abhi aankhein bhar rahi hai hamari. But Ramayan jo hamara ek vision tha, jo ek saal pehle shuru hua tha, jo Krish ji ke Ramayan ke knowledge se shuru hua tha, एंड जब हम उसको स्टेज पर लेके आना चाहते थे, वी ऑल्सो नो, हम आगे बात करते जाएंगे इसके बारे में, बट इफ़ यू आर आस्किंग मी हाउ आई एम फीलिंग, आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल, आई एम फीलिंग वेरी लव्ड, फीलिंग वेरी ओवरवेल्म्ड राइट नाउ. या
0: वेल सेड. और जी हाँ, जो कल हमारा, आपका, सबका जो रामायण था, रामायण अ टेल ऑफ टू किंग्स, फाइनली द कर्टन्स फेल ऑन इट. वैसे तो रामायण की जो टेल है, रामायण की जो कहानी है, ये कभी नहीं फिनिश होगी, जब तक सूरज चांद है, जब तक ये दुनिया है. पर कल हमारी जो मेहनत थी और हमें जो आप लोगों की तरफ से वहाँ पर जो प्यार मिला, जो अप्रिसिएशन मिला, और ख़ास तौर पर से जिस भक्ति में आप सभी रम गए थे, हमें ये नहीं पता है कि हमने वो शो कैसे किया. वो सिर्फ एक हमारा डिफिक्शन था जो हमारे मन में आया कि चलो, हम रामायण को कुछ बदला नहीं गया था. रामायण से पहले हमें बहुत बार बोला गया था कि अर्थ का अनर्थ नहीं करना. हमने कहा कि रामायण को तो कोई बदल ही नहीं सकता है ना, राम जी तो राम जी रहेंगे. पर जी भी हमने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था जो कल हमें वहाँ देखने को मिला.
1: जी, एंड जिस तरह क्रिश जी ने बोला कि हमें कहा गया था कि रामायण ला रहे हो, लेकिन रामायण का अर्थ नहीं बदलना. एंड वी ऑल्सो नो कि रामायण कितना सेंसिटिव है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है
0: टॉपिक,
1: सेंसिटिव टॉपिक है, या सेंसिटिव भगवान की कहानी है, कि अगर हमने कुछ भी गलत किया, वी नो के इट वुडंट हैव टर्न गुड फॉर एनी ऑफ अस, बट वी वर वेरी माइंडफुल एंड वेरी रिस्पेक्टफुल टू द रामायण. हमने जो स्क्रिप्ट निकाला, हमने रामायण से ही निकाला, कहानी को बिल्कुल भी नहीं बदला, पर एक नए वे में इसको प्रेजेंट किया. अगर जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, आप हमें बताना कि आपको कैसा लगा. अगर आप कल रामायण में आए थे, आपको कैसा लगा हमारा प्रोडक्शन, आपको कैसा लगा देख कर रामायण को इस तरीके से देखकर, एंड ग्रेटफुल ग्रेटफुल ग्रेटफुल.
0: जी हाँ, वैसे तो हमारा जो रामायण के हमारे जो स्पॉन्सर्स थे संडे शोज के, रामायण वैसे कल फिनिश हो गया, पर

आपके बिना, आप लोगों के सपोर्ट के बिना नहीं होता है। तो कैजी ने ये डिसाइड किया है कि सिर्फ सितंबर तक नहीं, अगले कुछ वीक्स तक हम आप लोगों को अपने दिल से याद करेंगे, और इसके साथ साथ जी भी खास तौर पर से उन लोगों को याद करेंगे जो कल हमें आकर वहाँ पर

0: है रामायण का, इट हैज बीन अ ब्यूटिफुल जर्नी, इट हैज बीन अ वेरी वेरी वेरी ब्यूटिफुल जर्नी. हाँ, उतार चढ़ाव था, अप्स एंड डाउन्स थे, बट फर्स्टली हमारा कोर टीम जो था, सूर्य चेची एंड उत्तरा, उनके बिना हम ये बिल्कुल भी नहीं कर पाते, बिल्कुल नहीं कर पाते. सो जब हम एक टीम बनाते हैं या जुड़ते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ऐसे लोगों के साथ जुड़े जिनके साथ हम हमारा जो विजन है वो मैच हो, या जो वैल्यूज़ है वो मैच हो और अलाइन हो. एंड देन आर कोरियोग्राफी टीम, हमारी कोरियोग्राफी टीम जो है उत्तरा, श्री लक्ष्मी, बिस्मी, राहुल और ऐश्वर्या, इन्होंने जिस तरह हमारे विजन को इम्प्लीमेंट किया, हमने तो पेपर पर लिख कर बता दिया था कि क्रिश और जिबी को ये चाहिए स्टेज पर उन्होंने जिस तरह ये इम्प्लीमेंट किया वो बहुत ही अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया. एंड आ क्रू मेंबर्स, हमारे डांसर्स, हमारे एक्टर्स, हमारे सिंगर्स दिशा और नीतीश, आप सब लोगों ने जो कल किया ना, ऑनेस्टली सल्यूट टू यू गाइस. या
1: सरस जी अब हमारे साथ वीजी से शामिल हो चुके हैं. सरस जी, जय श्री राम आपको, कैसे हैं? और तनु, थैंक यू सो मच डोल. हमारी वैसे बहुत ही कम मुलाकात होती है क्योंकि आप भी बिजी हो, हम भी बिजी है, पर जब भी मुलाकात होती है ऐसा नहीं लगता है कि हम काफ़ी दिनों बाद मिलते हैं, और कल आपसे मिलकर वहाँ पर वही फीलिंग आया. बहुत कम ऐसे लोग इस दुनिया में आपको मिलेंगे कि जिनके आँखों में आपकी कामयाबी, आपका सक्सेस और आपका खुशी का जो यू नो सेम रिफ्लेक्शन दिखेगा. एंड तनु, आई कैन ऑनेस्टली से मैं आपको सालों से जानता हूँ, और आई एम ग्लेड नाउ जीबी ऑल्सो आपको उसी तरह से जान चुकी है. वी कैन टोटली से अबाउट दैट अबाउट यू. द वे यू नो हमें आप कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो एवरी टाइम विद दिस जस्ट.
0: एंड आई शुड से दिस क्रिश जी, जब हम, जैसे आप लोगों को पता है, हमारे वानर सेना ने ऊपर से एंट्री लिया था, और हम जब ऊपर गए तो वैभव जी, तनु जी, आपके हस्बैंड वहाँ पर थे, एंड वैभव सेड व्हाट एन अमेजिंग शो, बहुत अच्छा जा रहा है, एंड फेल्ट रियली गुड एंड फेल्ट रियली प्राउड. साथ में समर्थ भी थे, सो थैंक यू सो मच. क्योंकि ड्यूरिंग द शो जब हम ये सुन रहे थे, हमें और एनर्जी मिल रहा था और मोटिवेशन मिल रहा था ये करने को. सो थैंक यू सो मच. और क्राइस्टचर्च, आप लोगों ने जो हमें सपोर्ट किया है उसके लिए हम बहुत आभारी है. फुल सोल्ड आउट शो 6 हफ्ते पहले, या वेरी वेरी वेरी ग्रेटफुल.
1: अगेन हमारे सारे जो स्पॉन्सर्स हैं, आप लोगों ने हमें बहुत बहुत मदद किया, तहे दिल से शुक्रिया. इसके साथ साथ हमारे जो एक्टर्स थे, शायद जो जो लोग वहाँ पे आए थे, तनु डगरी, तनु इसमें से काफ़ी चेहरों को आपने शायद पहली बार स्टेज पे देखा होगा. दैट वॉज जीबी इन माय विजन, कि हम जब ऐसे लोगों को स्टेज पर लेकर आए जो शायद कभी स्टेज पे जाने के लिए उन्होंने सोचा भी नहीं है, और शायद कभी उन लोगों ने मे बी यू नो इसके बारे में कहीं पे प्लान भी नहीं किया था, ऐसे ही उनसे मुलाकात हुई और जिस तरह से जीबी उन लोगों ने परफॉर्म किया,
0: जी, सो थैंक यू कहना चाहते हैं हमारे सारे स्पॉन्सर्स को, इनजेड मोबाइल मॉर्गेजेस एंड इंश्योरेंस, हमारे टाइटल स्पॉन्सर. कल रॉबिन भैया और रोशन भैया वहां पर थे भी, एंड ऑल द वे फ्रॉम ऑकलैंड. अगर आप सबको एक ब्रोशर मिला है, उस पर एक QR कोड है, सो इफ यू वॉन्ट टू विन एक्साइटिंग प्राइजेस, डू स्कैन द QR कोड एंड रजिस्टर योर सेल्फ. साथ ही साथ हम और इन्फॉर्मेशन इनजेड मोबाइल मॉर्गेजेस एंड इंश्योरेंस का डालेंगे, सो डू गो एंड चेक देम आउट.
1: जी हाँ, और हमारे बाकी भी जो स्पॉन्सर्स है, सिल्वर स्पॉन्सर्स, माया फूड्स, आर के बेंच टॉप्स, हर्ष एंड योर एंटायर टीम, आप वहाँ पर कल थे, हमें भी बहुत अच्छा लगा.
0: पूरी फैमिली के साथ आए थे ये.
1: दिया लाइटिंग के लिए आप आए, और जिस तरह से आप लोगों का प्यार हमें मिला, और जब हमारा शो फिनिश हुआ, व्हेन द कर्टन्स फेल, आप यू केम एंड हमसे बात की और हमें बताया कि आप लोगों को कितना पसंद आया, और अगले शो के लिए तनु की तरह आप लोग भी तैयार हो. थैंक यू.
0: मूविंग ऑन टू आवर ब्रॉन्ज स्पॉन्सर वंस अगेन, हार्कोर जी, थैंक यू सो मच के शो के बाद हमें आके अक्नॉलेज करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए, हमारे परफॉर्मर्स को, क्रू को अप्रिशिएट करने के लिए, और ये कहने के लिए कि आपकी लिटिल वन को कितना अच्छा लगा रामायण का शो. एंड इनकी बेटी ने आके हमसे बात भी किया, इट वॉज really really cute. And once again you also said you're super excited for the next production. We definitely are excited, we are working through it, but hamara next production humne kal release kiya tha, at some point of the show we will let you know the name as well.
1: Kamlesh Patel ji, thank you aapke aashirwad ke liye. Nikesh ni Lata ji, aapka bhi hum swagat karna chahte hain. Chale aage badhte hain, hamare supporting sponsors, kal aap bhi, you guys came in numbers, hame

0: मालूम है कि अब आप बिजनेस ओनर्स हो, बिजी शेड्यूल रहता है, फिर भी आप वहाँ पर अपना जो कीमती समय ये निकाल कर आए. सबसे पहले टच इन ग्लो जस एंड योर एंटायर फैमिली. पाजी तो स्टेज पर आकर आपने हमें जिस तरह से आपने बताया है, और आई थिंक लाइक जी भी आई थिंक जस पर्सनली स्पोक टू यू रिगार्डिंग आवर शो.
1: जी, जस जी का आज सुबह कॉल आया था एंड जस जी वॉज सेइंग द सेम थिंग कि एक सेकेंड भी नजर नहीं हटी स्टेज से या परफॉर्मर से, एवरीथिंग फ्रॉम डांसर्स. जस जी वॉज रियली टॉकिंग अबाउट द सिंगर्स दिशा एंड नितीश. जिस तरह दिशा और नितीश ने वाइब सेट किया था उस बारे में जस जी बात कर रही थी. एंड जस जी ने ये भी कहा कि उनको दिशा का ड्रेस बड़ा अच्छा लगा, बट आई फॉरगॉट टू टेल दिशा अबाउट इट. आई विल लेट यू जस जी, हम जरूर दिशा से पूछेंगे उन्होंने कहाँ से लिया था. बट डेफिनेटली
0: अपना दशरथ आ गया, आई थिंक इज दशरथ जी.
1: Thank you. So touch and glow. अगर आपको भी glowing skin चाहिए, so do go to touch and glow, guys.
0: इसके साथ साथ आगे चलते हैं पोतीचोर. हमारे साथ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खास तौर पर से केरला. आपको पता है हमारा पूरा शो कल जो था ये हिंदी में था, पर आवा मलयाली फैमिली आप you guys came in numbers, not in just numbers, supporting us, even though you know it's not your first your mother tongue language nahi hai. To Pothichor abhi Christchurch ke sath sath pass mein Rolleston mein bhi hai. Thank you Pothichor ke jo bhaiya hai, main unka naam to yaad
1: nahi. Binoy Chetan. And in saying that, Binoy Chetan ka bhi kal raat ko hi message aaya ke what an amazing show. But Binoy Chetan, we want to let you know ke aapke bina, without you, this wouldn't have been possible. So thank you so much for supporting Ramayan.
0: Ji haan, कमलेश जी कह रहे हैं कुमकर वॉज अमेजिंग ही वाज. और विनीता, आई ऑल्सो मेट यू, थैंक यू फॉर कमिंग एंड सपोर्टिंग. चले आगे बढ़ते हैं. अंशु आंटी कोई अंशु आंटी को टेक करो भाई, उनका भी दिवाली आ रहा है. जीबीजी 31st दिसंबर के लिए उनका पार्टी के लिए चला गया.
1: 31st अक्टूबर को हो रहा है सनातन महिला मंडल का फीजी दिवाली. गाइज लेट्स गो इन नंबर्स एंड सपोर्ट. इट्स अ फ्री इवेंट, इट्स फ्री फूड, इट्स फ्री entertainment. So let's go all in numbers and support Anshu auntie. Anshu auntie, it's not a big business, it's a small real fruit ice cream business, and still came on board to support Ramayan. Samne se auntie ne hame support kiya, so we are very very very grateful to Anshu auntie. So let's show the support back as well.
0: Nile bhai, Nile ji hamesha se hame support karte aaye hain as SBG accounting. Now hamare Ramayan mein Nile ji, we are homes. Nile, thank you bhai, aap bhi aaye. Aap mein bataye ki aap, you are not one of those person who wants to get recognized or gets called out, but thank you hame support karne ke liye. Aur iske sath sath MCK Manish community, kya Lorin ji aap busy the, aap khud to nahi pahunch paye, par aapne Rita aur Rita ke sath bhabhi ko bhi bheja tha, so thank you so much. I think they absolutely love the show. Rita ka ek bada sa message bhi aaya, and we saw the post
1: as well. Ji dental blossom dental Priya Narang ji, thank you so much for the support. And Priya Narang ji, आपने भी कहा कि नेक्स्ट प्रोडक्शन में यू वांट टू सपोर्ट अस एंड बी पार्ट ऑफ इट. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद ऑल ऑफ यू अगेन, बट थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग सपोर्ट. इफ यू आर इन एनी डेंटल नीड्स, डू कांटेक्ट प्रिया नारंग जी फ्रॉम ब्लॉसम डेंटल.
0: फोटोग्राफी के लिए अगर इफ यू फॉलो माय नॉट फॉलो अगर आप मेरे साथ फेसबुक फ्रेंड्स हो या इंस्टा फ्रेंड्स हो, ऑलमोस्ट ऑल माय प्रोफाइल पिक्चर्स इज डन बाय नन अदर देन जेके इमेजेस. सालों से, लगभग 10 साल से जब से क्राइस्टचर्च में आया हूँ, उनसे हमारी मुलाकात है जस्ट ऐसे शो में होता, पर ही हैज़ बीन विद अस फ्रॉम डे वन. जब से सिर्फ क्रिश और जीवी साथ में जब से हैं, तब से जेके भी हमारे साथ हैं. व्हाट एन अमेजिंग वर्क ही डज.
1: जी, एंड रामायण के लिए जो जेके इमेजेस ने हमें सपोर्ट किया है, नो वर्ड्स वुड बी इनफ टू से थैंक यू टू हिम. फ्रॉम ऑल आर क्रू फोटोज, जब हम क्रू इंट्रोडक्शन कर रहे थे, अगर आप लोगों को याद है, फ्रॉम दैट फोटोज टू इवन हिज डॉटर निया बीइंग आर सूर्पनाखा, एंड लॉट ऑफ यू लव्ड दैट कैरेक्टर सूर्पनाखा'स परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग. True everything, Ramayan ka photography lead jo liya hai and done our photos and everything is JK Images. Joey uncle, thank you so much for being our biggest support and for being our biggest motivation. And if you are looking for a photographer, JK Images is the name. Make sure you contact him.
0: Avi, Babu, Namaskaram, kaise? और प्रताप जी अभी हमारे साथ है, सर्वा कुमारन, वेलकम टू अवर शो. मूविंग ऑन, जेके इमेजेस के साथ साथ वीडियोग्राफी के लिए पीपी प्रोडक्शन, अभी तो वीडियोस हमारे रिलीज नहीं हुआ है, पर हमारी शादी के समय हमारी जो

0: वेडिंग वीडियोस आप देख रहे थे और इनका काम हमें भी लाइक काफ़ी सालों से हम इन्हें जानते हैं. तो कल जो भी वीडियोस हुआ, जो भी आप वीडियोस बाद में देखेंगे, डन बाय नन अदर देन पीपी प्रोडक्शन. प्रतीक जी, वी आर लिसनिंग आपको, रितु को, मीत को और छोटे से वियान को और हेरल इन हाउ कैन वी फॉरगेट अद्विक, आप सभी को थैंक यू सो मच.
1: कौन है नेक्स्ट?
0: Next, oh sorry, social media partner pe jaane ke baad, let me know for the next show, we get some amazing actors here in Auckland. Okay, we can't afford him, bro. Jibiji chalte hai, our social media partners, ICC, Indian.
1: Indian Social Cultural Club ko kis tarah hum thank you kahe. ICC is the one that managed the ticketing yesterday and it was such a smooth ticketing as well as the seating. So thank you so much, ICC, pehle se humare saath kaam karne ke liye as a family, like ICC is our family now. So Monty G and Sachi Bhaiya, you were at the doors with the ticketing and the way you did it, wo itna smooth flow tha. So thank you so much for that. And Anshu G, the way you did the seating and made sure that every seat was occupied and there was no gaps left, thank you so much Anshu G for doing that. And Indian Social Cultural Club ka bhi Diwali aa raha hai on 25th of October, so mark the date and we will see you guys for ICC Diwali.
0: Yes, Q2 se ho raha है और इसके लिए भी एक्साइटमेंट, वेल यू विल सी बहुत ही जल्द, क्योंकि रेडियो केजे इज वन ऑफ द मीडिया पार्टनर्स, बहुत ही जल्द हमारे पेजेस पे ये आप देखने लगेंगे. टॉकिंग अबाउट मीडिया पार्टनर्स, जहां से हमारा ये शो हो रहा है, पर इसके साथ साथ जो जो लोग वहां पर थे, आप लोगों ने काफी लोग जो रिकॉर्डिंग है और साउंड मिक्सिंग है इसके लिए हमें कॉम्प्लीमेंट दिया था, इट वॉज डन बाय नन अदर देन
1: Plains Media,
0: right over here, Charlie.
1: Plains Media. Yeah, and you were very right, क्योंकि काफी लोगों ने recording का और audio का compliment दिया है. And one of the youngsters ने आकर कहा कि initially I thought के जो recording है, जो audio है, it's AI generated. And only after some time is when she realized कि actually ये Krish और Jibby का voice है. So thank you so much, इतना सारा compliments मिला है on the audio recording, but it is our voice, but definitely the efforts and the help and the support was provided by Plains Media. And ye bhi janna zaruri hai ke it's not an Indian guy who did it. He did not know Ramayan, he did not
0: Charlie,
1: know anything about
0: Nico,
1: Ramayan. Yeah,
0: everyone actually did hamare mixing, Charlie, Nico, yeah, Plains Media se Priya,
1: yeah,
0: most of them hindi is not their first language.
1: No language at all,
0: yeah,
1: hindi is not their language as such,
0: so they don't know that, but well done. Or Lorenzoli Mani ji, namaskaram, we missed you.
1: Yeah,
0: but thank you so much, and thank you so much for supporting this event. It went really really well, thank you.
1: Nishi ji ka, Lauren ji ka message hai, well done to a great show, I saw some clips and pictures, thank you so much Lauren ji, and thank you so much for supporting. Please pass this to Ashwin ji as well.
0: Nishi, were you there? Did I see Nishi? I don't know.
1: No, I think Nishi ji ke tickets Anurag ji aur Chetna ji aaye the uspe, but Nishi ji keh rahe, huge congratulations on the success of Ramayan Krishan Jibby. Your hard work and dedication have truly paid off. So happy for you both. Wishing you lots more success ahead. Well done, keep it up. Thank you so much, Nishi ji. We missed you there and hope you and Mr. Nishi would have come there. That would have been, Mr. Nish would have come there. That would be great. Kaun hai Nishi?
0: Shakun Sharma ji, bhaiya hamare saath hai. Silky Thompson ji, haan, kal agar वहां पर आए थे, प्यारा सा जो डेकोरेशन, बड़े से रामायण का आपको एंट्री में ही दिखा, इट वाज डन बाय नना दा देन
1: सिल्की जी फ्रॉम फैनफेयर इवेंट्स. एंड नॉट ओनली द डेकोरेशन, फैनफेयर इवेंट्स ने हमें हमारे प्रॉप्स के साथ भी बहुत सपोर्ट किया है.
0: के बारे में बोल रहा था, जो बड़े से काउच में कुंभकर्ण सोया हुआ था ना,
1: अभी किसी ने लिखा था कि कुंभकर्ण का कैरेक्टर आपको बहुत अच्छा लगा, सो जो काउच में कुंभकर्ण लेटे हुए थे, दैट वॉज प्रोवाइडेड बाय फैनफेयर इवेंट्स. साथ ही साथ जो धनुष टूटा था, उसका जो टेबल था, उसका जो डेकोरेशन था, दैट वॉज डन बाय फैनफेयर इवेंट. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर इवेंट प्लानर और इवेंट डेकोरेटर, डू कॉन्टेक्ट फैनफेयर इवेंट्स.
0: जी हाँ, क्राइस्टचर्च में शायद ही ऐसा कोई इवेंट होगा जहां पर फैनफेयर नहीं होता है. थैंक यू सिल्की, थैंक यू द एंटायर टीम फॉर सपोर्टिंग अस. और एंथनी ब्रो, वी मिस्ड यू, आई डिडंट सी यू, बट थैंक यू. रोहित पटेल जी हमारे साथ है, थैंक यू. और अरे, हमारे साथ सेलिब्रिटी दिशा पटेल भी आ गई है.
1: दिशा जी भी है, कहाँ है, हमें तो नहीं नजर है.
0: not Disha. Okay,
1: sorry, celebrity.
0: Say it again.
1: The MC, the RJ,
0: the singer.
1: No craft.
0: No craft.
1: No craft. Disha ji, हमें रामायण के लिए background में

0: हेल्प कर रही थी और एक दिन हमने उनसे मदद एक्चुअली रामायण के डे पे
1: दिशा चीक चीक के लोगों को इसके में बता दो
0: देखो ये जीविका स्वभाव रामायण के डे पे सुबह को दिशा जी हमें हेल्प करने आई थी. थैंक यू सो मच दिशा जी, बहुत प्यारा हेल्प था. बट दिशा, you and Nitish, the stage opening was amazing. If anyone was there during the stage opening, do give a shout out to
1: Silky,
0: Disha.
1: Silky was there.
0: Yeah, do give a shout out to Disha and Nitish because they did an amazing job with creating the vibe and starting on time. So well done, Disha. RJ Disha kehna chahiye. Well done, RJ Disha. And we are looking forward for our future projects.
1: Aur usse dekho, khatron ki khiladi Rohit Patel. Usi ghar mein wahin se baithkar has raha hai bhai. Himmat hona chahiye bhai. Jigar nahi, jigra hai aapke paas.
0: Yeah. Tanu ji, jo aap big fan ho Kumbhkaran ki, unko Kumbhkaran ko agar letana tha, ek proper couch chahiye tha aur wo fanfare events ka couch tha.
1: Pyara sa, khoobsurat sa. Aur yahan tak ki hamara jo Ramayan hai, jo Fiji se aaye hain aur like लगभग 100 साल पुराना है रामायण जहाँ पे था वो भी फैनफेयर की तरफ से था. चलिए एक गीत में चलते हैं ताकि वी कैन ऑल्सो टेक अवर हेडफोन्स एंड टॉक टू द पीपल हमारे साथ जो फेसबुक लाइव में, पर जितने लोग हमारे साथ फ्रिक्वेंसी पे, लीजिए आप सभी के लिए धुरंधर द रिवेंज का ये गीत जान से गुजरे थे. आई विल टेल यू अ स्टोरी कि इस गीत को हम यहाँ पे क्यों बजा रहे. तब तक के लिए यू आर लिसनिंग टू रेडियो केजलो कल
0: ओनली ऑन प्लेन्स मीडिया 96.9.

0: वेलकम बैक टू रेडियो KJ लोकल. यू लिसनिंग टू अस ऑन प्लेन्स मीडिया 96.9 और अब हम फेसबुक पर भी लाइव आ चुके हैं.
1: जी हाँ बिल्कुल. और एक बार फिर अगर शायद आप हमारे साथ अभी भी शामिल हुए हैं, हमारे साथ कल जो रामायण के शो के बाद द ओवरवेलमिंग हमें जो कंग्रेचुलेशंस मैसेजेस रिस्पॉन्सेस जो या तो ये रिस्पॉन्स चाहे एक कॉल के फॉर्म में आया है या मैसेज के फॉर्म में या पर्सनली आप लोगों ने किया है, बहुत लाइक आई थिंक इट्स गोना बी वन ऑफ आवर फेवरेट मोमेंट्स यू नो एवर.
0: या रामायण हैज बीन वन ऑफ आई शुड से इट काइंड ऑफ मार्क्स इन आवर डायरी एज वन ऑफ आवर favorite and memorable thing that we did. The journey itself has been like really, I mean, it's for anyone who wants to do a production, for anyone who wants to do MCing and RJing, we do want to say that it's a rewarding job, it's amazing, lekin isme kafi effort lagta hai, kafi mehnat lagta hai, and we wish you all the best, and I think everybody should try what they feel their talent is.
1: Singh sir, you are with us. We are right now from Christchurch. ये program जो आप देख रहे हैं तो आपका भी स्वागत करना चाहते हैं. I hope you guys आप हमारा जो show ही enjoy कर रहे हैं. Yes, तो guys कल हम जो रामायण के जो show है हम we

0: not gonna go like you know not gonna get too carried away with it kyunki hame pata hai ki mehnat hum logon ne to background mein kiya tha par jo stage pe aake jin logon ne kiya they should be given the main credit
1: yeah everybody kisse shuru kare hamare dance crew my ladies you girls worked so hard kyunki agar hum dekha jaye to hamari ladies hai jo 9 months se practice kar rahi hai then we got actors only after July as such so 9 mahine se practice karna I think ek stage aisa bhi aa gaya tha bas ho gaya yaar kitna lamba chal raha hai ye practice and training and thakan and all aur aaj subah hame kitne logo ka call aaya aur messages aaya kyunki sunday usually 10:30 ko training hota hai and then they are like oh aaj itna suna lag raha hai bina training ke and bina kuch and hame bhi suna lag raha hai par aaj hamare bodies kafi exhausted and tired hai but maybe wednesday wo hame hit hoga ki yaar sab khatam ho gaya
0: Yeah, the girls did look very beautiful. Yashmin ji, thank you. Aap bhi aaye hamare saath on behalf of MC Kia. Aap aur Rita ji, you were there. Thank you. Bahut hi acha laga aap logo se milkar. Aur well, aapke chehre par aur Rita ji ke chehre par wo muskaan aur wo jo happiness hame dikhaye, so uske liye dil se shukriya.
1: Yashmin ji, I know ke aapne humse tickets mange the, so I'm very actually happy ke jo Lauren ji ne aapko tickets diya, I was very happy to see you there. Kyunki I know how many times you asked for tickets, so thank you so much. Ek kaam karna, next production mein pehle hi ticket le lena.
0: Ji haan, aur okay, hamare paas at least another 15 minutes baki hai, 10 minutes actually. Chale, next production के बारे में हम बात करते हैं जिसका डेट तो अभी हमने वेल वी इवन नो डोंट नो कब है पर जी भी आई थिंक एक अलग जब क्योंकि आप जो जो लोग धर्म में यू नो फॉलो करते हैं आपको पता होगा कि राम जी त्रेता युग में पहले आते हैं और राम जी के बाद द्वापर युग में श्री कृष्ण श्याम जी आए थे तो जी भी What are we doing next?
1: And क्योंकि राम जी पहले आए थे और कान्हा जी बाद में आए थे तो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कान्हा माखन से महाभारत तक और हम चाहते हैं कि आप सब वो आके एक्सपीरियंस करो वंस अगेन हमारे क्रू मेंबर्स जितने भी लोग हमें ज्वाइन करेंगे वो ज्वाइन करेंगे एंड देन वी विल बी वर्किंग रियली रियली हार्ड टू ब्रिंग दिस प्रोडक्शन इन फ्रंट ऑफ यू एंड अब हमें और मेहनत लगेगी क्योंकि आई थिंक आप सबका एक्सपेक्टेशंस भी अभी लाइक काफी हाई हो गया होगा हमसे विच मीन्स कि हम लोगों से अब डबल मेहनत लगेगी हमारे क्रू से अभी डबल मेहनत लगेगी बट हम कोशिश करेंगे कि हम जस्टिस दे एंड जब कान्हा के बारे में बात करें आई एम सुपर एक्साइटेड कृष जी क्योंकि कान्हा के जो स्टोरीज हैं जैसे
0: मुझे लगा आप बोलेंगे कि मेरे पास खुद एक कृष्णा है
1: वो भी है हमारे पास खुद एक कान्हा है जो नटखट है जो नॉटी है जो गोपियों के पीछे जाते हैं हमेशा एंड माय डांस क्रू नोज कि ये कितने गोपियों के फैन है सो कान्हा जी की कहानी लेके आने में और वो एक अलग अंदाज होगा रामायण वॉज डिफरेंट एंड कान्हा जी की कहानी अलग होगी तो हम चाहते हैं कि आप वो विटनेस करो आप आओ एंड हमें सपोर्ट करो हम सून एक पोस्ट डालने वाले हैं उसके बारे में बट वी आर होपिंग दैट आवर कम्युनिटी सपोर्ट्स अस अगेन
0: दीपू ब्रो यू आर आल्सो विद अस अनदर अमेजिंग सिंगर फ्रॉम क्रैशेस दीपू थैंक यू और इसके साथ साथ सरोजनी नमस्कार हम कैसे हैं यू विल बी कृष्णा भाई आपको भी पता है और पूरी दुनिया को पता है और जो जो लोग कृष्णा को देखे हैं कि कृष्णा इस रंग का होता है गोरा कृष्णा नहीं होता है भाई तो अगर हो सके अगले 2-3 साल में अगर आप ये रंग का हो जाओ आपको कृष्णा बना देंगे उसमें क्या
1: है सो हाँ हम लेकर आएंगे कान्हा माखन से लेकर महाभारत तक एंड वी आर सुपर सुपर एक्साइटेड एक्चुअली ये लास्ट वीक ही हमने पूरी तरह कंफर्म किया कि हाँ लेट्स डू अनदर वन
0: थ्रू मिडवे जब हमारा ये जेनी रामायण के साथ शुरू हुआ था आई थिंक 3 months अगो वी काइंड हम सोच रहे थे इसके बारे में क्योंकि बट देन ओवर द टाइम जो जो हमारे साथ हो रहा था इन टाइम्स हो रहा था इन सेंस कि आपको पता है कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करता है वो आसान नहीं होता है बहुत डिफिकल्टीज lots of obstacles
1: and we should also let you guys know ke isme kafi funds jo hai wo hamare khud ke haath se gaya hai
0: kidney bechne ka samay aa gaya mera
1: I think kidney bechne ka bank khali ho gaya hai but we are not unhappy about it or we are not dissatisfied about it because we feel that it was a blessing yesterday jo feeling tha na jo vibe tha us venue mein jo aap log create kar rahe the usme paise bhi gawa diye hame like utna farak nahi padta so but also we had a lot of learnings from the productions yeah, a production like this is not always a smooth journey so hamare lot of learnings hai is production se jo hum hamare next production mein

0: कराएंगे, बट यस वी वुड लव योर सपोर्ट विद कान्हा एज वेल.
1: थैंक यू प्रतीक, थैंक यू सो मच ब्रो. और यस प्रतीक, आई एग्री विथ यू. हमने तो इतने बार ओवाइन अगेन हमने ये देखा था, हमारी नज़र नहीं हट रही थी. तो जो जो लोग पहली बार देख रहे थे, हम सोच ही रहे होंगे कि आपके लिए कितना होगा.
0: यू नो प्रतीक जी, एक टाइम ऐसा हुआ था कि हमको तो दिखाई नहीं दे रहा था, हम लोग भाग दौड़ कर रहे थे, पर एक टाइम ऐसा हुआ था जब क्रिस जी और हम ऊपर गए थे हमारे वानर सेना को नीचे भेजने के लिए, एंड उस टाइम पे पहली बार हमने ऑडियंस को और स्टेज को देखा. लाइक फर्स्ट हमारा विच वॉज एन इंटरवल, ऑडियंस और स्टेज को देखा, एंड यू गाइज आर एक्टर्स एंड डांसर्स. वो हनुमान एंट्री में जो फील आया था जब आप लोग एंटर हो रहे थे,
1: परमिंदर तूर जी आप भी कल वहाँ थे नॉवल्टी को. आपको रूबी भाई को धन्यवाद, वन ऑफ द प्रैक्टिस. आपने हमें मीठा, हमारा मुंह मीठा करके पहले से ही शुभ आगमन का शुरुआत कर दिया. तो परमिंदर जी अगर आप सुन रहे हैं, और रूबी जी आपको भी दिल से शुक्रिया. रितु ने एक बहुत ही अच्छा सजेशन दिया है, जो जो लोग देख रहे हैं आप प्लीज बताइए दिलीश जितने लोग हैं के बारे में आपको क्या लग रहा है.
0: कृष्णा आप कान्हा एंड मैं राधा. मैं राधा. मैं राधा. पर एक्चुअली दैट वुड बी अ परफेक्ट कॉम्बो, क्योंकि कन्हैया हमेशा से सांवले रंग के थे. कन्हैया हमेशा सांवले रंग के थे, और हमारा होप है हम भी एक कन्हैया सांवले रंग का ही लेकर आए आपके साथ.
1: इफ यू सी ऑल आवर कैरेक्टर्स, राम जी के चेहरे पे क्या होता था?
0: कामनेस.
1: हमारे कैरेक्टर के चेहरे पे वो कामनेस था.
0: जी,
1: सीता माता वाज लाइक वेरी व्हाट्स द वर्ड,
0: फ्रजाइल एंड लिटिल एंड रावण को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि लुक्स लाइक ऑडियंस रावण से काफी इम्प्रेस थी. हमारे रावण को हिंदी बिल्कुल लाइक ही इज मलयाली, हिंदी आता है बात करना, बट रावण ने जो काम किया, फर्स्ट टाइम ऑन द स्टेज एज एन एक्टर रावण ने एंट्री किया था. उन्होंने पहले कभी एक्टिंग नहीं किया. वैसे 80% ऑफ द क्रू वॉज न्यू परफॉर्मर्स, वेरी वेरी फर्स्ट टाइमर्स ऑन द स्टेज, वेरी वेरी वेरी फ्रेश परफॉर्मर्स. सो शमनाथ, सुपर प्राउड ऑफ यू. एंड ईच एंड एवरी कैरेक्टर छोटे से लेकर बड़े तक, आप लोगों ने क्या कमाल किया है.
1: जी हाँ बिल्कुल. और अरे हमारे हनुमान जी भी आ गए, कृष्ण भाई कृष्णा और आई कैन बी बलराम. देखो कैरेक्टर्स मिल रहे हैं सारे. आज हमारी राधा बन जाना जीबी जी, चलो आप आ हमारी राधा बन जाना. जी हाँ, तब तो आपको, अगर जीबी जी राधा बनेगी तो आपको कृष्णा बनना पड़ेगा प्रतीक जी. और दिशा जी कह रहे हैं रावण वाज एपिक, ही वाज अनथिंग. जैसे हमारे सारे कैरेक्टर्स, आपने देखा होगा कि हमारे जो कुंभकर्ण थे आखिरी में केले खाते, यू नो, खाने का शौकीन थे.
0: ओह माय गॉड, दैट वाज द फन पार्ट. आर कुंभकर्ण, व्हाट ही डिड एट द लास्ट कमिंग, केला खा के आ रहे थे, एंड दैट वाज वेरी इंप्रेसिव. एंड एवरीवन, आई लव द वे द स्टेज क्रू केम, द गर्ल्स केम, वानर सेना केम, रावण का, सॉरी एक्साइटमेंट आ रहा है, रावण के बच्चे जिस तरह है.
1: एक्साइटमेंट होते होते हमारा एक्चुअली फ्रीक्वेंसी का शो जो है ऑलमोस्ट डन, बट डोंट गो, वी विल बी टॉकिंग टू यू गाइस फॉर अनदर क्वाइट सम टाइम. चलिए जितने लोग हमारे साथ फ्रीक्वेंसी पे जुड़े हैं, थैंक यू सो मच. सॉरी यू गाइस विल मिस आउट, क्योंकि हमारे फेसबुक लाइव पे हम इनसे बात करते ही रहेंगे, पर डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी सीइंग यू इन फ्यू डेज, दैट इज ऑन फ्राइडे 6 बजे, सेम प्लेस सेम टाइम. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. दिस इज योर होस्ट आरजे क्रिश साइनिंग ऑफ विद अ वेरी ब्यूटीफुल विद अ वेरी गॉर्जियस
0: आरजे जी. बाय.